अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: मर जाए मिट जाए हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 9 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।
1: Mm-hmm.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 2 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हे अरे हे सूरदास का औलाद,
1: तो क्या सुनाई नहीं पड़ा था हम कहा कहते थे, हम कहा ठहरा करने को कहा गया गया।
2: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
3: गोविंदा,
1: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
3: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
4: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
3: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ईद दारू का अड्डा बंद कर दे।
3: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
3: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
5: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
6: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
5: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

0: हाय राम, का हुआ रे गोविंदा?
1: हो तेरा बिटवा जवान होई गवा, हो तेरा बिटवा जवान।

घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज जी।

और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अभिषेक तिवारी जी, और मुबारक हुसैन जी है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और प्रशांत अम्बुलकर सर जी जुड़ चुके हैं बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, और रविंदर सानू जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हेलो हेलो हाय रेडियो हॉटस्टार और सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है रविंदर सानू जी, और अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अरुण मंडल जी, राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है राजेश कुमार जी, बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बिट्टू जी आपका भी, और साथ ही साथ बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बीके पंत जी, और नाजिम जी हैं, वेलकम है नाजिम जी आपका भी, और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है प्रमोद कुमार जी, और जितने भी दोस्त और आरजे सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका, और आनंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आनंद जी आपका भी, जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुन रहे हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले सुनवाता हूँ ये गजानंद जी का ग्रुप का वो गाना, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए, सभी दोस्तों के लिए गाना डेडिकेट है।

0: बिल्कुल होगी ना कम, होगी ना कम, होगी ना कम। और सभी का वेलकम करते हुए फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। सबसे पहले सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: जय हमारा जी, फूले बख्श संजू भाव जी, गजाना सोलोकर जी, पूरे ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ नाहे जी लिखते हैं कि गजानंद जी की ग्रुप फरमाइश शानदार लगी है, सभी को धन्यवाद। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ब्यूटीफुल फरमाइश है ये। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, बहुत ही नाइस सॉन्ग है। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही दिलकश ही नगमा है, सुनकर अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। आरजे वंशिका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं,
2: गजानंद जी के ग्रुप की पसंद सुपरहिट लाजवाब लगी है और गीत में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गजानंद जी। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: धन्यवाद आपका भी अशोक देशमुख जी। अगली फ्रेंड की तरफ मैं बढ़ूंगा, सीधे चलूंगा एमडी यानी कि नाजिम जी के पास बेंगलोर। लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, आज मुझे फिल्म मोहब्बते का गाना सुनना है। और सबसे पहले आपको और आरजे वंशिका जी को, संजू भाव जी को, रोहित जी को और सर्वेश भगत जी को, ईश्वर लाल जी को, नाहिद जी को, कुंता बेनी जी को, बीके पंत जी को, दत्ताक्रम जी को और जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं, लाइव शो एंजॉय कर रहे हैं, सभी गाने को डेडिकेट करना चाहूंगा। सभी को एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया ये गाना भी। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है संध्या जी। रेडियो हॉटस्टार के ऐप से मैसेज कीजिए आप भी। और हमारे आनंद जी हैं जो बेस्ट यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा रेडियो हॉटस्टार का इन्होंने अपना यूट्यूब पर बनाया हुआ है और हमने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में। थैंक यू सो मच आनंद जी।

0: छुपा लो ना। वैसे गाना भी बहुत बहुत ही प्यारा था। नाहिद जी लिखते हैं, वाओ वाओ वंडरफुल। नाजिम जी, थैंक यू सो मच फॉर डेडिकेशन। एंड सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय मोहन सर जी।
0: जी जी,
1: हिंदी नाजिम जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद आपका भी। और आर्यवंशी का जी लिखते हैं कि हमको हमसे चुरा लो, बहुत ही प्यारी फरमाइश है नाजिम जी की। ज्योति खटवाड़ी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है ज्योति जी आपका। और मीना जी लिखते हैं, वाह क्या गाना है, दिल खुश कर दिया है भाई साहब ने। एंड यहाँ पे प्रेम हमारे यानी कि प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि मोहब्बत का गाना बहुत ही ये मेलोडियस है जी, ये मेलोडियस तो है ये गाना, और इसका जो संगीत है ना वो सीधे दिल में उतर जाता है। वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनील कुमार जी का है, और ये सुनील कुमार जी बांका बिहार वाले हैं, और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं यहाँ पे सर्वेश भगत जी का, क्या कहते हैं?
1: आरजे मनसा जी, सुनील कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ज्योति जी लिखते हैं कि दोनों गाने सुपरहिट लगे हैं। और नहीं जी लिखते हैं कि वाओ वाओ वाओ, सो नाइस, सुपरहिट पसंद है, अमेजिंग पसंद के लिए भाई सुनील जी थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं। राधा कृष्ण गोप जी, आपके वो दोस्त कहाँ है, देवेंद्र तांती जी और एक और नाम था तुलसीदास महतो जी, ये लोग आजकल दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। काजल झक्का जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी झक्का जी। और आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जबरदस्त सॉन्ग सुनने को मिला है। और अंगद मिसाल जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए जी, जी वेलकम है आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, शानदार गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं बहुत दिन बाद, बहुत बहुत वेलकम है। अगली फरमाइश जो है वो बीके पंत जी का कि तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, सच में रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। सभी दोस्तों के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, सुनवा दिया।

0: बिल्कुल, रब करे रब करे रब करे कि तुझको भी प्यार हो जाए सच में। और बहुत ही प्यारी फरमाइश है और बहुत से फीडबैक भी आए हुए हैं। गजानंद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार, हम सभी साथियों की फरमाइश को प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका। और मिसाल अंगद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है अमन सर जी और मजा आ रहा है सुन के। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है। एंड ये फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, वीके पंत जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपको भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम सॉन्ग है, धन्यवाद देते हैं बीके पंत जी को, थैंक यू सो मच बीके पंत जी। एंड ज्योति खटवाड़े जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग भी लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं बहुत ही कितना खूबसूरत गाना है, शानदार गाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं सर्वजीत सेठी जी।
2: अमन सर जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना देगी।
0: धन्यवाद है आपका भी सर्वजीत सेठी जी। और सरफराज जी लिखते हैं वाओ वाओ, आज के सभी गाने अभी तक जितने प्ले हुए हैं सभी मस्त मस्त मस्त लग रहे हैं। राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार कह रहे हैं। और अगला जो फरमाइश है राजमल हिवराले जी का है, राजमल हिवराले जी सुनना चाहते हैं ये चांद कोई दीवाना है, क्या गाना है सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए। सभी दोस्तों के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।

0: वेलकम बैक। ये चांद कोई दीवाना है और फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है। सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम इस सरायकेला झारखंड से। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: अजय मनसा जी, राजमल जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद आपका भी। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सो मच सर जी, आपका भी गाना बहुत ही मस्त है, वो तो जरूर शामिल होगा हर हर।

0: में। और गजानंद जी लिखते हैं कि राजमल हिंगलाले जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद राजमल जी। और आर्जवंशिका जी लिखते हैं कि ये चांद कोई दीवाना है, बहुत ही प्यारी फरमाइश भी है। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाओ सुपर से ऊपर वाला खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अशोक देशमुख जी क्या कहते हैं,
1: ये चांद कोई दीवाना है हिंगलाले जी की पसंद, बहुत ही शानदार गीत सुनवाया और गीत में शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: धन्यवाद अशोक देशमुख जी। और ज्योति जी लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब पसंद है। और हुकुम चंद जी क्या कहते हैं,
2: नमस्ते अमन सर।
0: नमस्ते,
2: आज की फरमाइश बहुत ही प्यारी चल रही है,
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, हुकुम चंद जांगीर कोटा राजस्थान से।
0: धन्यवाद आपका भी हुकुम चंद जांगीर जी। एंड नाहिद जी लिखते हैं कि वाव क्या पसंद है, वंडरफुल चॉइस के लिए थैंक यू सो मच राजमल हिवराले जी। एंड मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि अमन जी अच्छा ओके मैं देखता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे तो दिख अच्छा हाँ ठीक है दिख गया। और अगर हो सकेगा तो उसका लिंक भी भेजिएगा मुझे, और अगर नहीं मुझे मिलेगा तो। एम डी नाजिम जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, धन्यवाद सुनवाने के लिए इस गाने को। एंड हमारे एनालिटिक आनंद यूट्यूब यानी चैनल से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका सर जी। और ये लिखते हैं कि आपके प्रोग्राम को मैं मतलब यानी कि कंटिन्यू में सुन रहा हूँ, और इंटरनेट रेडियो के फील्ड में ये इनकलाब है, जस्ट लाइक इट। और यूट्यूब वर्किंग विथ यू इज ए वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी टू टॉकिंग रेडियो टू दिस नेक्स्ट लेवल, माय रिक्वेस्ट। ओके सर जी, जरूर मैं सुनवाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके और उनके पास से है राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, सुपर सॉन्ग है, धन्यवाद देते हैं। ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: अमन सर जी आज की फिल्म का गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: क्या हो गया आपकी आवाज को, आपकी आवाज को क्या हो गया है जरूर बताइएगा, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। और मनीषा जी लिखती हैं कि एक मनीषा शर्मा जी है वो अलग है, और एक मनीषा जी जुड़ी है वो अलग है। तो मनीषा जी आपका भी वेलकम है। और ओके तो फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ अच्छा ओके फिलहाल अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे यहाँ पे यानी काजल झक्का जी का। तो काजल झक्का जी आज सुनवाना चाहती हैं फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता का गाना, सुनो मियाँ अपने स्पेशली मिट्टू मियाँ जी को डेडिकेट, और सभी सुनने वाले को भी डेडिकेट, और सुनवा दिया, इन्जॉय कीजिए। इन्होंने मुझे डेडिकेट नहीं किया है, कोई बात नहीं।

0: मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और सबसे पहले तो यानी कि प्रशांत अमृतकर सर जी लिखते हैं कि अच्छा वो थैंक यू सो मच आपका भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अरजय अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी धन्यवाद आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद एकदम बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गीत के लिए। और

0: बालों में।
1: और जुड़ चुके हैं मेरी नंदिनी माँ जी, बहुत बहुत वेलकम है और शुभ संध्या। अम्मा जी आपको मेरा प्रणाम है। और नाही जी लिखते हैं कि वाव काजल जी की पसंद एकदम झक्कास लगी है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपर सुपर हिट चल रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद मुझे बहुत ही सुपर हिट पसंद लगी है। एंड राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि अमन जी, देवेंद्र तांती जी, तुलसीदास महतो जी और शुक्रा नायक जी, ये सभी आजकल मुझे फोन नहीं करते हैं। अच्छा, ओहो, चूंकि मैं काम पर आजकल बिजी रहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप उन्हें एक बार फोन करके यानी पता कीजिए कि वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। जी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं,
2: अमन सर जी झूठ मत बोलो, ये गाना बहुत अच्छा लगा मेरे को और सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी अच्छा लगा होगा। सुनील कुमार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, वेलकम है सुनील कुमार जी। एंड जाकिर खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया, वालेकुम सलाम, वेलकम है आपका भी। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। बीके पंत जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: बहुत ही प्यारा सॉन्ग बजा रहे हैं आप और आपकी आवाज ना बहुत ही प्यारी है।
1: थैंक यू सो मच आपका भी। और लग रहा है कि कुछ स्पेशल बना रही है, क्या बना रही है संध्या जी, बताइएगा जरूर। मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ खाने के लिए। और यहाँ पर राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है बहुत। और वंशिका जी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद मुझे बहुत ही शानदार लगी है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद काजल झक्का जी, इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और अगला जो गाना है वो रंजीत कुमार जी की पसंद है ये, और वो ये दिल दीवाना है कहना ना माने, शायद यही गाना वो लेकर आए हुए हैं, तो सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए। ये दिल दीवाना है

0: बिल्कुल, ये दिल तो पागल है कुछ भी ना जाने, और दिल तो दिल होता है ना। गोविंदा खंडादे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और मंगेश दशमुख जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमन सर जी, रंजीत कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और गजानन जी लिखते हैं कि दोस्त रंजीत कुमार जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद रंजीत जी। एंड राधा कृष्ण को लिखते हैं कि शानदार पसंद चल रहा है, धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और राकेश शर्मा लिखते हैं कि वाव वाव वाव लाजवाब पसंद। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम भी जुड़ गए, जी जी वेलकम है आपका भी। सभी दोस्तों को नमस्ते, नमस्कार करें। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं पहली बार सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच रंजीत जी। एंड राजमल जी लिखते हैं कि आरजे अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि ये दिल दीवाना है, ये भी गाना बढ़िया है, जी बिल्कुल। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि शानदार गीत के लिए रंजीत जी को धन्यवाद देते हैं, और गीत में शामिल करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तोहिदीना खातून जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम है, वालेकुम सलाम। और बेटे को मैं लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद लगी है, थैंक यू सो मच। एंड मनीषा शर्मा लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है ये। और रामके जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रामके जी। अगली पसंद मीना इब्राहिम जी की यूएस से लिखते हैं कि छोटे सरकार का गाना सुनना चाहती है, सोचो ना जरा ये सोचो ना, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए, सभी दोस्तों के लिए ये गाना है।

0: वेलकम बैक। और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश है, थैंक यू सो मच मीना जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। मोहन हमारे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद अच्छी चल रही है और कार्यक्रम सुपर हिट हो रहा है, अच्छा थैंक यू सो मच। और नाहिद जी लिखते हैं वाओ वाओ मीना जी क्या बात है, लाजवाब गाना सुनवाया आपने, धन्यवाद देते हैं आपको। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
1: जी अमन सर जी, मीना इब्राहिम जी अपने गाने में शामिल किए, उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय रिक्वेस्ट। एंड रामकेत जी लिखते हैं कि दिल को छूने वाला गाना ये, थैंक यू सो मच मीना जी। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, धन्यवाद देता हूँ मैं उनको। और ये फीडबैक,
2: हेलो आरजे अमन सर जी, मैं भी आपके लाइव शो में जुड़ गया हूँ। अनिल मेहता सूरत गुजरात से, सभी गाने की फरमाइश एक से एक बढ़कर चल रही है, धन्यवाद
0: जी। जी बहुत बहुत वेलकम है अनिल मेहता जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि मीना जी की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है। आरजे वंशिका जी लिखते हैं कि सोचो ना बहुत ही बेहतरीन पसंद है, थैंक यू मीना जी। अगली पसंद, अच्छा यहाँ पे मनीषा शर्मा लिखते हैं कि सुपर से सॉन्ग, सुपर वाला सॉन्ग है, मेरा फेवरेट गाना है, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए मीना जी। एंड हमारे अनंत जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है सर जी प्रोग्राम, और लिसनर की चॉइस का ही जितनी तारीफ करें कम है, और आपके अंदाज का तो क्या ही कहना है। यदि बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप को गाने को यानी प्ले करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप प्लीज यानी दिल पर ना लेंगे, लेकिन गाना मैं जरूर आपका प्ले करूंगा। अगला जो पसंद है वो प्रशांत अम्बुलकर सर जी का है, आंखें तेरी कितनी हसी है, इंजॉय कीजिए इस पसंद को। मतलब ये क्या बताएं, ये पसंद मुझे बहुत पसंद है।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं और बहुत सारे फीडबैक है। पहला तो ये
1: मानसा जी अमूलकर जी अपने गाने में शामिल किए, धन्यवाद देते हैं,
0: धन्यवाद। और उनके पास से है ज्योति खरवड़ जी, इस गाने को यानी कि जो इसमें यानी कि टान है ना, ओ माय गॉड, सच में दिल में दर्द कर देता है इस गाने को यानी कि टान ने। और यहाँ पे लिखती है ज्योति जी के मीना जी की भी पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है, थैंक यू सो मच। और राकेश शर्मा जी लिखते हैं लाजवाब लाजवाब लाजवाब सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। एंड मोहन वाली जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर सॉन्ग लगा है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। एंड अजय भगत जी लिखते हैं कि सोचो ना, बहुत ही खूबसूरत गाना सुनने को मिला है, थैंक यू सो मच मीना जी। एंड मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, आई लव दिस सॉन्ग। ये लिखते हैं यानी कि हमारे एनालिटिक आनंद यूट्यूब चैनल वाले, धन्यवाद है सर जी, मौला मेरे मौला, इस गाने को इन्होंने भी पसंद किया है। और मीना जी लिखते हैं वाह वाह बहुत ही बेहतरीन गाना है, धन्यवाद देते हैं इनके लिए। मनीषा जी लिखते हैं कि मस्त फरमाइश चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। और आरजे पंचिका जी लिखते हैं कि रूप कुमार राठौर की आवाज में माय फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच प्रशांत अमरकर सर जी। एंड नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है जी बिल्कुल, और इस गाने को गाना सच में बहुत ही कमाल की बात है, मतलब हर कोई इस गाने को नहीं गा सकता है, रूप कुमार राठौर ही इस गाने को गा सकते हैं। अनिल मेहता जी लिखते हैं कि सुपर गाने की फरमाइश, थैंक यू सो मच। एंड बी के पंजी लिखते हैं कि सर जी सुपर हिट गाना मौला मेरे मौला, मजा आ गया सुन के। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर पसंद के लिए सर जी को धन्यवाद देते हैं। संतोष काले सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, लिखते हैं सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, नमस्कार है, वेलकम है आपका भी जी। और ये क्या कहते हैं, रामकेश जी लिखते हैं कि 100% मार्क्स दिया जाता है इस गाने को फॉर दिस सॉन्ग, अच्छा जी यानी आपको भी पसंद आ गया। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश के लिए धन्यवाद देता हूं। और प्रशांत सन जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए जी। गाना ही कुछ ऐसा था, हम क्या ही बताएं, इस गाने की जितनी तारीफ करें उतना ही यानी कि कम है। फिलहाल हम अगला गाना में प्ले करने वाला हूं, और नाहिद अंसारी जी का बे इरादा नजर मिल गई तो वो मेरा दिल ही मांग बैठे, सनम बेवफा का लाजवाब गाना सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट है।

0: वेलकम बैक और ओके और यहाँ पे नाही जी लीजिए, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए और ये गुड बाय।
1: जय अमन सर जी, नाही अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और उनके पास है आरजे वंशिका जी, लिखते हैं कि बे इरादा नजर मिल गए, तो बहुत ही प्यारी पसंद है नाही जी की और ये फीडबैक।
2: वाह आरजे अमन सर जी, बहुत ही लाइव, बहुत ही सुपर और सुपर चॉइस ये गाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी आपको भी। और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी सुपर फरमाइश, बे इरादा नजर मिल गए तो। और रामके जी लिखते हैं कि इस गाने की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है, धन्यवाद देते हैं नाही जी को। और यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम पसंद है नाही जी आपकी। मोहन वाली लिखते हैं कि सुपरहिट गाने के लिए धन्यवाद देते हैं नाही जी को। एंड अजय भगत जी लिखते हैं कि बे इरादा नजर मिल गई तो सॉन्ग, वाह क्या मतलब जितनी तारीफ करें उतना कम है। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए थैंक यू नाही जी। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि सुपरहिट फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं नाही जी को। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं नाही जी। लिखते हैं कि सभी दोस्तों का थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। ओके जी, और
3: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: धन्यवाद आपका भी। और अगला जो फरमाइश है वो सर्वजीत सेठी जी के फाजिल का पंजाब से है। लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्कार, मैं सर्वजीत सेठी फाजिल का पंजाब से, आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सिंदूर और ये गाना सबसे पहले आपको और सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, और वैसे फीडबैक भी बहुत आने लगे हैं। राकेश शर्मा लिखते हैं कि वाओ नाइस पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। सुपर से भी ऊपर वाला गाना है। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि बे इरादा नजर मिल गई, तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए नाहिद जी को। और ये फीडबैक
1: जय अमान सर जी, सरबजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और नाहिद जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक।
2: नमस्कार अमन भाई।
0: नमस्कार।
2: गाना बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय, पुराने ओल्ड इज गोल्ड, उसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद है आपका मिस्टर यानी के कालीचरण मास्टर जी। और नाजिम जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक।
3: नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। वाह बहुत ही लाजवाब, शानदार, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत ही सुपर गाने की चॉइस की है। ओके थैंक यू।
0: ओके जी वेलकम जी आपका भी। और बीके पान जी लिखते हैं कि सर जी वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, सुपर फरमाइश लगी है। एंड रामके जी लिखते हैं वाह ये भी गाना है सरबजीत सेठी जी के आपके पसंद, शानदार, मजा आ गया सुन के। एंड राधा

0: आता हूँ आपको अशोक देशमुख जी के शायद वॉयस है।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
1: मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
1: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता।
0: बिल्कुल नहीं बोलता।
1: और गाने का बोल है पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना।
0: अच्छा।
1: ये गीत सबसे पहले मैं आपको
0: थैंक यू
1: और आपकी सुंदरता की मुहूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर। धन्यवाद।
0: सर्वेश भगत जी।
2: अर्जी अमन सर जी, शुभ संध्या। नमस्कार। नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: आज हमारा फरमाइश का फिल्म है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। गाने का बोला है पा लिया है प्यार तेरा जी अब नहीं खोना है। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, तुझे टुको आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत अरविंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, प्रशेश्वर भगत, आनंद शेखर, आनंद भगत, सोनी कुमारी, मुनि कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, अनिल मेहता जी और नंदलाल यादव जी और आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मुरत जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एम एस परमार जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में शामिल सभी को।
0: ओके जी। आत्माराम जी और नंदलाल जी भी शामिल इस गाने में। एंजॉय कीजिए यानी चारों दोस्त।

वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। और रामकेश जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलजुली पसंद का लाजवाब सॉन्ग सुनने को मिला है, अच्छा लगा ये गाना भी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उनके पास से नाहिद जी लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी और सभी की तीन दोस्तों की मिलजुली फरमाइश बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं अमेजिंग पसंद के लिए। ज्योति जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की मिलजुली पसंद लाजवाब लगी है। एंड अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर जी,

0: अरे तुम जब कहो ना, फिलहाल ये फीडबैक सुनो ना।
1: जय मास्टर जी,
0: जी
1: हमारा चारों भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए और आपको लाख लाख धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी। अच्छा और कुछ कह रहे हैं? अच्छा कहिए कहिए।
1: को लाख लाख धन्यवाद, आप हमारा गाना अपने फरमाइश में जगह दे दिए। थैंक यू सर।
0: वेलकम वेलकम वेलकम। और मोहन भाई लिखते हैं कि ये चारों दोस्तों की मिलीजुली फरमाइश सुपरहिट लगी है। बाबूलाल जी लिखते हैं हमारे ये चारों दोस्तों की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का ये फीडबैक।
2: हेलो आरजे अमन सर, आदरणीय सर्वेश भगत जी का चार मिली जुलू भाइयों का गाना में हमको भी शामिल किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आए हो और सभी गाने एक से एक बढ़कर चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अनिल मेहता सूरत गुजरात।
0: ओके जी वेलकम है आपका भी। और विलास निकम सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। इसी बात पे अगली जो फरमाइश है वो संध्या पटेल जी का है, वादिये इश्क से आया है इनका शहजादा। ये अपने हस्बैंड को स्पेशली डेडिकेट करके सुनाना चाहती है। सुनवा दिया संध्या पटेल जी, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: काम आती है ना।
1: वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा।
0: वेलकम बैक, और बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं तो उसमें शामिल करता हूँ। पहले सरोजी सेठी जी का
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, तो सुनते हैं रेडियो हॉस्टल जो सबको दीवाना बना देगा। सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद आपका सरबजीत सेठी जी। और ये क्या कहते हैं सर्विस भगत जी?
3: मान सर जी, संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
0: जी। धन्यवाद आपका भी। और ये फीडबैक,
4: वाह बहुत ही लाजवाब गाना, सुनकर अच्छा लगा, सुपर चॉइस है, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और नहीं जी लिखते हैं वाह वंडरफुल फरमाइश के लिए, थैंक यू सो मच संध्या जी। और ज्योति जी लिखते हैं कि ये संध्या जी की पसंद ब्यूटीफुल लगी है, थैंक यू सो मच संध्या जी। एंड रामकेश जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। और प्रशांत अम्बुलकर से जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है और इसे सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अर्जय मन सर जी आप जो गाते हैं ना तो वो और मजा आता। अच्छा वो, थैंक यू सो मच, मैं इस गाने में नहीं गा सकता ना, मेरी फीमेल आवाज नहीं ना है। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि वाह वाह वाह क्या बात है, सुपरहिट गाने लगा है मुझे, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है यहाँ पे संध्या जी का, थैंक यू सो मच संध्या जी। और ओके, तो इसी बात में जो अगला मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो सुनीता गोप जी का, वो सरायकेला झारखंड से सुनना चाहती हैं और ये गाना सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं। तो सुनवा दिया सुनीता गोप जी, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। मेरी इस मोहब्बत का जाने क्या होता तुम जो ना मिलते, सच में बहुत ही प्यारा गाना है और फीडबैक भी आया हुआ है मेरे पास। और ये फीडबैक
1: बहुत ही वेरी नाइस, सुपर चॉइस है, थैंक यू।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: रहमान सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और रामकेश जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, क्या गाना है, एकदम दिल को खुश करने वाला गाना है। मीना जी लिखते हैं, वाह वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच सुनीता जी, मैं पहली बार सुन रही इस गाने को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की फरमाइश लाजवाब बेहतरीन। और ज्योति जी लिखते हैं कि सुनीता जी की पसंद लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि ओह हो क्या बात है, एकदम जबरदस्त फरमाइश, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि श्रीमती जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद। वी के पंच जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड मोहन वाली लिखते हैं कि सुपर पसंद है और पसंदकर्ता को धन्यवाद देते हैं। MD5 जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। एंड संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन सर जी मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी। और निकी पप्पन सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार आपका भी। और राजेश गौतम जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत वेलकम है राजेश गौतम जी। और लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं, ओके। और इसी बात पर अगला जो गाना है वो महक जी का, महक जी आपकी पसंद सुनवा दिया और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं महक जी।

0: वाह वाह वाह, क्या पसंद है महक जी, आपकी पसंद सच में लाजवाब। ये फीडबैक
1: रहमान साहब जी, महक जी अपने गाने में शामिल किए, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और एमडी फैज जी लिखते हैं वाओ लवली सॉन्ग, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच महक जी का। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद बहुत ही सुपरहिट लाजवाब लगी है। और मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत लाजवाब, शानदार और प्यारी पसंद है, धन्यवाद देते हैं महक जी को। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट गाना है, थैंक यू। और नाहे जी लिखते हैं कि महक जी की पसंद शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। एंड ये फीडबैक।
2: हेलो आरजे अमन सर जी, हमने आज यूं तो मोबाइल एप्लीकेशन का जो मोर बटन है उससे सॉन्ग रिक्वेस्ट से गाना भेजा है, क्योंकि आरजे वंशिका ने भी बताया कि पहली तारीख से सभी गाने सॉन्ग रिक्वेस्ट से ही लिए जाएंगे, इसलिए मैंने आज दो तीन दिन से ऐसे ही इस तरह से गाना भेजना किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके गाना मेरे पास आया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आपके गाना, और हाँ आपका जो गाना है ना वो सबसे मैं लास्ट में प्ले करूंगा, भले और किसी का गाना मैं प्ले करूंगा चाहे नहीं करूंगा, लेकिन आपका गाना जो है, क्योंकि वो ऐसा गाना है कि जो मैं उसको यानी प्ले करके ही जाऊंगा, इतना समझ लीजिए, तो आपका गाना सबसे लास्ट में प्ले होगा। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और अगले जो यानी कि पसंद है वो बिंदिया जी की पसंद है, और बिंदिया जी बहुत ही प्यारी फरमाइश लेके आ जाई है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग आपको यानी कि मेरी तरफ से भी, और ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए बिंदिया जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और ये गाना उफ, दिल को एकदम मतलब झकझोर देने वाला गाना है। दिल खुश हो जाता है इस गाने को सुनने के बाद। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये पसंद भी बहुत ही यानी प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, बिंदिया जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बिंदिया जी की पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एवरी फैज जी लिखते हैं कि बिंदिया जी की पसंद एकदम ही बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पसंद है राहत फतेह अली खान की आवाज में। और मनीषा शर्मा लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर वाला गाना है ये। और मोहन भाई लिखते हैं कि वाह ये बिंदिया जी की पसंद मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। संतोष गौंड जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही बढ़िया गाना चल रहा है। और राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत बहुत ही प्यारा गाना है अमन जी, और गाने में चार चांद लग जाते हैं जब आप लाजवाब और यानी गाते हैं वो। थैंक यू सो मच संध्या जी आपका। और इसी बात पर अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना है हमारे दोस्त यानी कि प्रमोद कुमार जी का, ये है आगरा वाले। और आगरा वाले का गाना है, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं हमेशा की तरह, जैसे जैसे सभी को करते हैं, मतलब ये गाना सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट है जो भी सुन रहे हैं सभी के लिए। तो सुनवा दिया भाई प्रमोद जी, इंजॉय कीजिए। धक धक धक धक सुनाई दे रहा है मुझे, तो सुनाई दे रहा है दिल की धड़कन।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी बहुत सारा आ चुका है मेरा, बहुत सारे फीडबैक आए। ओ माय गॉड, बाबूलाल जी लिखते हैं कि बिंदा जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, उनको धन्यवाद है। और बलदेव राज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है बलदेव राज जी। और रामकेश जी लिखते हैं कि दोस्त यानी कि प्रमोद जी आपकी पसंद लाजवाब, डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड ये फीडबैक
1: आरजे मंसा जी, प्रमोद कुमार जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद आपका भी। और उनके पास से ये फीडबैक।
2: वाओ, बहुत अच्छा सॉन्ग है, इतनी अच्छी पसंद के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच आपकी फीडबैक के लिए। और यहाँ पे बीके पंजी लिखते हैं, सर जी बेहतरीन फरमाइश की, तुझे रब ने बनाया किस लिए, मजा आ गया सुपर फरमाइश के लिए। और ज्योति खटवाड़े जी लिखते हैं कि आपकी पसंद भाई साहब बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको इस गाने के लिए। और एमडी फैज जी लिखते हैं कि एकदम वंडरफुल फरमाइश है, दिल से धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और हमारी नंदनी माँ जी लिखते हैं कि बिंदिया जी की और ये सभी गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि माय फेवरेट सॉन्ग है, बेहतरीन सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। ओके थैंक यू सो मच राजेश गौतम जी। और मीना जी लिखते हैं कि वाओ क्या बात है, बहुत ही गाना सुनकर दिल खुश हो गया है एकदम। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि तुझे रब ने बनाया किस लिए, क्या गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
3: तुझे रब ने बनाया किस लिए, इसलिए इसलिए। अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग सुन के मजा आ गया, रूपचंद गोयल।
0: धन्यवाद जी। और उनके पास है यहाँ पे नामदेव जाल्टे जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि सो हार्ट टचिंग सॉन्ग है, लाजवाब फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच प्रमोद जी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन सर, फिर एक बार निसार अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया तुझे रब ने बनाया किसके लिए, तो अमन सर जी आपको रब ने बनाया हमारे लिए, क्योंकि आप न होते तो हमको रेडियो हॉटस्टार सुनने को नहीं मिलता और आप हमसे बातें भी नहीं करते। लेकिन अमन सर जी आपकी जो हमारे दिल में जो इज्जत है ये बहुत बड़ी है अमन सर जी, और आप जैसे आर जैसे हम हर दिन बातें करते हैं, हमारे पूरे दिल में जो भी है हम सभी आपसे शेयर करते हैं अमन सर जी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और आज के गाने तो हमको और भी खूबसूरत और बहुत अच्छे लगते हैं, अभी तक तो हमने हर गाना सुना है अमन सर जी। और आप जिस प्रकार आज आप कार्यक्रम सजा रहे हो ये तो बहुत अच्छा है अमन सर जी, और आज हम आखिर तक आपका कार्यक्रम का आनंद लेंगे। धन्यवाद
0: धन्यवाद। और उनके पास से ये क्या कहते हैं, राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि सुपर हिट फरमाइश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रशांत अम्बुलकर सर जी लिखते हैं कि तुझे रब ने बनाया बहुत ही प्यारा सॉन्ग। एक मुझे और गाना याद आ रहा है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, सच में ये मैं प्ले कर दूं क्या, मुझे मन कर रहा है इस गाने के बाद इस गाने को सुनने का। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन सर जी, आपने मेरा गाना प्ले किया, और दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि वाह बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों को। और पीकू राय जी लिखते हैं कि हम भी अच्छे हैं और सॉन्ग की फरमाइश एक से बढ़कर एक चल रहा है। और चलिए इसी बात पर रब ने बनाया तुझे मेरे लिए थोड़ी सी मैं सुनवाता हूँ इस गाने को, चूंकि अगर इस गाने के बाद अगर ये गाने को न बजाया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं। तो मैं सुनवाता हूँ इस गाने को, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, एंजॉय कीजिए।

और जैसे कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ही गाना प्ले करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा गाना प्ले किया। और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, हमारे आनंद जी का मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। आनंद जी, अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए। फिल्म मोहरा का गाना है टिप टिप बरसा पानी, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। बी के पंजी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है सर जी, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नामदेव जालदेव जी लिखते हैं वाह शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड ये फीडबैक मैं सुन लेता हूँ एक मिनट, और ये सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी, आपका पसंद का गाना बहुत फास्ट क्लास का, लाख लाख धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी है आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आनंद जी के पसंद लाजवाब बेहतरीन, थैंक यू सो मच आनंद जी। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि ये बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही नाइस पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। राहित जी लिखते हैं कि आनंद जी आपका टिप टिप बरसा पानी शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। रामकेश जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद, अच्छा लगा ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोहन नवारी जी लिखते हैं कि टिप टिप बरसा पानी के लिए शानदार पसंद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या गाना है, धन्यवाद देते हैं इस पसंद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और ये फिर
2: बरसात के टाइम पे सच में ये गाना आग लगा देता है, बहुत ही प्यारा गाना है
0: जी बिल्कुल। और ये गाना तो सच में दिल खुश कर देता है। और प्रशांत अंबुलकर सर जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है टिप टिप बरसा पानी। वैसे अगला जो पसंद है मैं सुनाता हूँ, मिसाल अंगद जी के पसंद है। मिसाल अंगद जी क्या सुनाना चाहते हैं आज, जैसा देखता हूँ मैं।
3: हेलो अमन सर
0: जी,
3: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में एक गीत भेज रहा हूँ। और अमन सर जी आज के 90 स्पेशल में मुझे पापा द ग्रेट इस फिल्म का गाना सुनने का है, और गाने के बोल है बिंदिया सजन ही पायल बजन ही। अमन सर जी ये गाना मुझे सुनने का है, और ये गाना सबसे पहले मैं आपको डेलीगेट करूंगा, फिर आपकी सुंदरता की मूर्त, इन दोनों के लिए भी ये गाना मैं डेलीगेट करना चाहता हूँ। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, संतोष एस काले जी, सर्वेश भगत जी, हीरामन खिराड़े जी, मोहन नेवारे जी, दत्ता कदम जी, आनंद सालोकार जी, संतोष एस काले जी, सर्वेश भगत जी, हीरामन खिराड़े जी, मोहन नेवारे जी, दत्ता कदम जी, आनंद कुलकर्णी जी, अमोल कामरे जी, और सुरेश विजय पाटिल जी, और आदरणीय बबीता जी, इन सभी के लिए मैं गाना सुनना चाहता हूँ। और अमन सर जी हमारे सभी दोस्त रेडियो हॉटस्टार से जुड़े हैं, तो हमको बहुत खुशी है इस बारे में। तो अमन सर जी आज सभी दोस्तों के लिए ये गाना सुनवा दो।
0: सुनवा दिया, धन्यवाद।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक भी आ गया है बहुत सारा। और बाबूलाल जी लिखते हैं, अमन सर जी ये अंगद मिसाल जी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और एमडी फैजी तो वाह, एकदम जबरदस्त गाना, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: जय अमन सर जी, मिसाल अंगद जी अपने गाने में शामिल किया, इसका पहले आनंद जी अपने गाने में शामिल किए, दोनों भाई को धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। सर्वेश भगत जी और मोहन वाले जी लिखेंगे, आनंद जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। आनंद कुलकर्णी, आनंद जी नहीं ये मतलब ये नहीं कि मिसाल अंगद जी हैं। और नाहिद जी लिखते हैं कि भाई मिसाल अंगद जी की पसंद बहुत ही शानदार, मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और रविंदर गोरखपुरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। तो बहुत बहुत वेलकम है रविंदर गोरखपुरी जी। और पीकू राय जी लिखते हैं कि वाह ये गुस्सा तेरा बाकमाल, लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद। एंड रवि मोहरे जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी, बहुत बहुत वेलकम है। और इसी बात पर अगली पसंद सुनवाना जा रहा हूँ मैं, जाकिर खान जी की पसंद, सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। जाकिर खान जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। और फिर बैक आ चुका है मेरे पास बहुत सारे। पहला तो ये
1: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी धन्यवाद आपका भी। और अपिकुरा लिखते हैं कि वाह गाना अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या पसंद है, थैंक यू। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट फरमाइश है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और नामदेव जालदेव जी लिखते हैं कि दिल को छूने वाला गाना चल रहा है। और मोहम्मद शाहनवाज जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ा हूँ जी। वेलकम है मोहम्मद शाहनवाज जी आपका। और इसी बात पर अगला जो गाना है दिगंबर जी का सुनवाता हूँ मैं आपको।
2: ये एक सॉन्ग ये है अमन सर जी, जानवर पलटते हुई नजर देखता है किधर पास तो आ इधर। ये एक और सॉन्ग डाल रहा हूँ, इन दोनों सॉन्ग में से कोई सा भी सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: ओके सुनवा दिया, जाने मन एंजॉय कीजिए।

0: बहुत चालाक है।
1: अच्छा ना ना ना ना ना
0: हो रहा है ऐसे जान बन जान मन।
1: ओहो।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक आ चुका है बहुत सारा, पहला तो ये सुनते हैं।
1: जयमान सर जी, दिगंबर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद है आपको भी। और रविंदर गोरखपुरी जी लिखते हैं, जयमान सर जी अच्छा ओके, तो आप एक काम, अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। वैसे आप चाहे तो वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ये फिर।
2: थैंक यू सो मच सर गाना सिलेक्ट करने के लिए, और सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और सर जी प्रोग्राम में सभी सॉन्ग इससे बोल कर 90s के कर रहे हैं। थैंक यू सभी दोस्तों को, मैं जाकिर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: धन्यवाद जाकिर खान जी। और मोहन भाई लिखते हैं, जाने मन पलट गई तेरी नजर गाना अच्छा लगा है। और बीके पंजी लिखते हैं, वाह सुपर हिट फरमाइश जाने मन जाने मन। मीना जी लिखते हैं, बहुत ही लाजवाब गाना है।

राधा कृष्ण गोपी जी के बहुत ही लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और ज्योति खटवड़े जी लिखते हैं कि आज के सभी सॉन्ग लाजवाब, इसी बात पर ज्योति जी का गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ। लिखते हैं कि नमस्ते अमन जी, आज 90s एंड न्यू स्पेशल में मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये गाना सबसे पहले अमन जी आपको, अर्जवंशिका जी को और अरुणा जी को, संगीता जी को, मनीषा जी को, सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए ज्योति खटवड़े।

0: वेलकम बैक। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे, यानी कि तोहदीदा खातून जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। अच्छा, ओके, वेलकम है आपका भी तोहदीदा खातून जी, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमन सर, क्या हाल है जी? ठीक है सर, मैं बीमार था इसलिए लॉन्ग टाइम से ऑनलाइन नहीं आ पाया। अभी ठीक हूँ, अभी मैं आपके सॉन्ग अच्छे सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से बज रहे हैं, मजा आ रहा है।
0: तो बहुत बहुत आपका वेलकम है भाई। मोहम्मद शाहनवाज अंसारी जी कहाँ थे भाई, कहाँ गायब हो गए थे, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम है। ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी सॉन्ग सुनवाने के लिए, और सभी का थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए, गाना को पसंद करने के लिए। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है ज्योति जी, और एमडी फैज जी थे वाह क्या बात है ज्योति जी, एकदम बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपने, मजा आ गया। और मीना जी थे वाह वाह वाह शानदार गाने के लिए, थैंक यू सो मच। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: जय मान सर जी, ज्योति घटवटे जी अपने गाने में सामने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और पिकुरा जी लिखते हैं कि वो हो बहुत ही खूबसूरत गाना है ज्योति जी, दिल से धन्यवाद आपको इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। मोहन जी लिखते हैं कि चोरी चोरी दिल दिया था, सुपर हिट पसंद है ज्योति जी का। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, इतना अच्छा गाना सुनवाया आपने। ओके, तो इसी बात पर सुनवाता हूँ, यानी मनीषा जी की पसंद है, और मनीषा शर्मा नहीं, मनीषा जी हैं ये, और उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ सभी दोस्तों।

0: वेलकम बैक। और नाहिद जी लिखते कि ज्योति जी की पसंद मुझे बहुत बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और फीडबैक
1: आरती अमन सर जी, मनीषा जी अपने गाने में शामिल किए उनको धन्यवाद देते हैं जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। और ये फीडबैक
2: अमन सर जी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटल में था और
0: ओह माय गॉड, अभी ठीक है ना?
2: मैं आउट ऑफ इंडिया में हूँ, तो काफी टाइम से तबीयत सही नहीं थी, तो इधर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर।
0: अच्छा अच्छा।
2: और ऊपर से हॉस्पिटल में लंबा टाइम मेरा कटा है सर। मैं सबसे यही दुआ करूंगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं सब सुनते हैं सॉन्ग, सभी मेरे लिए दुआ कीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो, मेरी
0: बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लीजिए, बस सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और यहाँ सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल, ज्योति जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद बहुत लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम फरमाइश है ये। और मोहन हमारे जी लिखते हैं कि राधा कैसे नजर ले, सुपर हिट पसंद है मनीषा जी आपकी। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, थैंक यू सो मच। और प्रशांत अमुलकर सर जी लिखते हैं कि ज्योति जी और मनीषा जी आपका गाना बहुत ही लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी पसंद है, दिल खुश कर दिया। और ये क्या कहते हैं,
3: नमस्कार मनो भाई
0: जी,
3: इस समय बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, बहुत ही सुपर हिट,
0: धन्यवाद भाई, यानी कि कालीचरण मास्टर जी। और अगला जो गाना मैं सुनाना जा रहा हूँ वो रविंदर गोरखपुरी जी का है, सुनना चाहते हैं फिल्म दीवाना का लाजवाब गाना पाया लिया, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक और फीडबैक आ चुके मेरे पास बहुत सारे, तो सुनवाते हैं। सबसे पहले नाही जी लिखते हैं कि सुपरहिट पसंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रविंदर गोरखपुरी जी को। ज्योति जी लिखते हैं कि भाई सर की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। एंड MD5 जी, वाह एकदम जबरदस्त गाने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और बीके पंजी लिखते हैं कि अमन सर जी ये पहलिया वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और राजेश गौतम जी लिखते हैं लाजवाब सॉन्ग। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि ये पहली वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अर्जमन जी पहली वाला गाना मुझे बहुत ही मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: अर्जमन सर जी, मनीषा जी,
0: अच्छा वो तो हो चुका है आपका, ओके। और ये फीडबैक
2: बहुत खूबसूरत सॉन्ग था सर, पाया लिया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के सर। और सर मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आप अच्छे से रहें,
0: थैंक यू,
2: बढ़िया से रहें। और जितने भी हमारे हॉटस्टार सुनने वाले हैं, सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं, सभी अच्छे से रहें। मेरी यही खुदा से दुआ है सब अच्छे से रहें और हॉटस्टार सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए पूरी फैमिली के साथ।
0: बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद भाई मोहम्मद शाहनवाज भाई, अच्छा लगा आज आपसे ये मिलकर बातें करके, क्योंकि अब बहुत दिन बाद आए हैं और आप अच्छे हो जाएं, बस मैं यही दुआ करूंगा। और सर्वजीत शेट्टी जी लिखते हैं कार्यक्रम तो शानदार शानदार शानदार। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं बहुत ही सुपरहिट पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी प्यास, जरती नहीं रात। अमन सर जी लाजवाब सॉन्ग, दिल खुश हो गया। रूपचंद गोयल,
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो यानी कि पसंद है वो मेरे दोस्त सरफराज जी यानी कि सरफू भाई जी का गाना है, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए ये गाना सरफराज भाई।

वेलकम बैक। और इसी बात पर मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। बीके पंची जीते सर जी, भाई साहब की फरमाइश तो सुपर सुपर सुपर हिट लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। नाइस जी लिखते हैं बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन फरमाइश के लिए सरफराज जी, थैंक यू सो मच। नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है आपका। और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो शाहिद अंसारी जी की, और शाहिद अंसारी जी गाना प्ले कर दिया आपका, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम बैक और फीडबैक आ चुके हैं बहुत सारे मेरे पास। नाहिद जी लिखते हैं बेहतरीन फरमाइश के लिए धन्यवाद देते हैं, और दाता कलम जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है। दाता जी सरफराज जी देते हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माई रिक्वेस्ट, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पसंद है, धन्यवाद मेरे दोस्त। एंड मीना जी लिखते हैं वाओ क्या गाना है, दिल खुश हो गया। फैज जी लिखते हैं जी एकदम बेहतरीन वंडरफुल फरमाइश है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल गाने की फरमाइश। इसी बात पे अगला जो गाना मैं लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ राजेश गौतम जी, इन मुंबई से, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए राजेश गौतम जी ये गाना।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी आ चुका है बहुत सारा। और पहला तो ये,
1: हेलो अमन सर।
0: जी बोलिए बोलिए।
1: मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस भाई साहब की ये पसंद होगी इनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी, रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से यूट्यूब की लिंक कैसे शेयर करें इनके बारे में हमको जरूर बताना।
0: अच्छा जी, धन्यवाद, जरूर बता देंगे। देखिए, आप पहले ये बताइए कि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट से यानी कि करना चाहते हैं या मैसेज से फरमाइश करना चाहते हैं। वैसे मैं बता दूं कि आप तो ज्यादातर जितने भी सॉन्ग मतलब यानी फरमाइशें आएंगी वो सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही आएंगी। तो मैं आपको सबसे सिंपल भाषा में सॉन्ग रिक्वेस्ट को ही समझा देना चाहता हूँ कि ताकि आपको आसान रहे वहाँ से सॉन्ग रिक्वेस्ट करना। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो रेडियो हॉटस्टार का एप्लीकेशन है उसमें दो जगह सॉन्ग रिक्वेस्ट आपको मिलेंगे। एक, जब सबसे ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, मतलब जो भी यानी कि कंटेंट्स है उसको ऊपर जरा यानी बढ़ाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, तो वहाँ सबसे पहला मिलेगा वो यानी नीचे में देखने को मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट। आप मतलब यानी कि उस जगह से भी भेज सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है रेडियो हॉटस्टार के सबसे नीचे ऐप में लिखा होगा इन मोर, पहले लिखा होगा यानी होम, उसके बाद होगा अपकमिंग, अपकमिंग के बाद होगा यानी पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट के बाद होगा मैसेज, मैसेज के बाद होगा वो होगा मोर। मोर पर क्लिक कीजिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आएगा सॉन्ग रिक्वेस्ट का। उसमें जो भी आरजे टाइम अवेलेबल होगा, जैसे अभी मैं शो कर रहा हूँ तो उसमें दो ऑप्शन आपको यानी मिलेंगे, यानी कि एक रहेगा वहाँ पे यानी किसी भी आरजे को और एक आरजे अमन को। तो आप आरजे अमन पर क्लिक कर लीजिए, आरजे अमन को सिलेक्ट कर लीजिए। दो ऑप्शन जरूरी है, एक है आपका नाम, उसमें नाम जरूर लिख दीजिए, और दूसरा है यानी सॉन्ग का नाम, वो दोनों तो जरूरी है, और बाकी कुछ भरे चाहे ना भरे वो दो भरना जरूरी है। उसके बाद यानी सिंगर का नाम अगर आपको याद है तो भरिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। मोबाइल नंबर भरिएगा, अगर आप यानी कि सॉन्ग के होते हैं इन विनर तो आपको कॉल किया जाएगा, या मतलब यानी कि पहले कॉल किया जाता था लेकिन अब कॉल नहीं किया जा रहा है, आपको बोल दिया जा रहा है कि भाई आप अपना गाना भेज दीजिए, तो अपना नंबर जरूर यानी कि मेंशन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो भी ऑप्शनल है। दूसरी बात है कि गाना यानी किसके लिए सुनवाना चाहते हैं, वो मतलब यानी किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, उसमें अगर भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है आरजे के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं, अगर आरजे के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे तो वहां पे दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब उसके नीचे है वॉइस रिकॉर्डिंग, आप चाहें तो वहां से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, अब मैसेज ही काफी है। उसके नीचे सबसे नीचे होगा यूट्यूब लिंक, वहां पे आप YouTube के लिंक को वहां पे लाकर पेस्ट कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, मेरे पास आ जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल सा है एकदम। और अब फीडबैक शामिल करता हूँ। नाही जी लिखते हैं कि वाओ अमेजिंग पसंद है, थैंक यू सो मच, ये आंखें आईना मेरी जिंदगी का। और ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड कंजन मास्टर जी क्या कहते हैं?
2: राजेश गौतम को की पसंद के लिए धन्यवाद।
0: ओके जी, धन्यवाद भाई यानी कि कालीचरण मास्टर जी। और शायद अंसारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच राजेश गौतम जी आपका भी। और उनके बाद एमडी फैज आलम लिखते हैं कि वाह भाई बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपका, दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही झक्कास पसंद है। और बीके पंच लिखते हैं सर जी ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का लाजवाब गाना है। एमडी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपरहिट पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं अमन जी या आंखें हैं आईना मेरी जिंदगी का बहुत ही लाजवाब गाना है, धन्यवाद देते हैं। एंड राजेश कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है राजेश गौतम जी का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनिल कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा गाना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, अगली पसंद मैं सुनवाऊंगा वो है मनीषा शर्मा जी की पसंद है। मनीषा शर्मा जी आपकी पसंद को मैंने प्ले कर दिया, धन्यवाद देते हैं।

0: वेलकम बैक और फिर बैक आ चुका है दत्तक राम जी। दिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी के पसंद मुझे बहुत अच्छा लगा है ये फिर बैक।
1: यार ये जाने कैसा है, कभी दर्द ये देता है कभी खुशी देता है। मनीषा जी की पसंद लाजवाब है, उनको दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल
0: जी। जी और ज्योति जी लिखते हैं कि मनीषा जी की पसंद सुपर लाजवाब। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, क्या लाजवाब पसंद है। एंड सरोजी जी लिखते हैं जबरदस्त गीत सुनने को मिला है। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। जी जी वेलकम है आपका भी। अगली पसंद मंगेश जसमू जी का जब तुम आ जाते हो सामने। बिल्कुल

बिल्कुल, कुछ गीत लबों पे सजते हैं जब तुम आ जाते हो सामने। क्या बात है सुनील कुमार जी, देखेंगे। और ये जो यानी कि कालीचरण मास्टर जी है जो जुड़ते हैं हॉट स्टार से, अच्छा तो ये भाई कालीचरण जी, हमारे सुनील कुमार जी यानी कि बांका बिहार वाले, ये कहते हैं कि वो आपके डिटेल मांग रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो बोलिएगा तो मैं आपका नंबर इन्हें शेयर कर दूंगा, आप बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले आपसे इन्हें पूछना जरूरी है मेरा। राजेश गौतम जी लिखते हैं कि अमन सर जी आपने मेरा गाना प्ले किया, धन्यवाद देते हैं, और फीडबैक देने वाले दोस्तों का भी धन्यवाद है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और नाही जी लिखते हैं कि वंडरफुल फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच मंगेश देशमुख जी। और बीके पान जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है, धन्यवाद। एंड ज्योति जी लिखते हैं कि भाई सर की पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। फैज जी लिखते हैं वाव शानदार पसंद के लिए थैंक यू सो मच। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और दत्ताक्रम जी लिखते हैं कि मंगेश देशमुख जी आपका गाना सुपर से ऊपर है। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, धन्यवाद देते हैं, सभी दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मीना जी लिखते हैं कि वाह क्या लाजवाब पसंद है, थैंक यू सो मच। एंड प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन पसंद। और अगली पसंद इसी बात पे मैं सुनवाने जा रहा हूँ, वो है राधा कृष्ण गोप जी का। राधा कृष्ण गोप जी गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना सभी दोस्तों को हमेशा की तरह डेडिकेट कर रहे हैं, इंजॉय कीजिए राधा कृष्ण गोप जी। और ये गाना मैं शायद पहली बार सुनने वाला हूँ, तो इंजॉय कीजिए।

राधा कृष्ण गोप जी, आज आप बनते हैं सॉन्ग के विनर, तो अगर कोई और गाना सुनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना मुझे वो मैसेज भेज सकते हैं। आपके पसंद को एक और मैं पसंद इनकी जरूर प्ले करूंगा। और ज्योति जी लिखते हैं कि भाई साहब की पसंद ब्यूटीफुल है। जी बिल्कुल ब्यूटीफुल तो है, नो डाउट। एंड हुकुम चंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी अच्छा कोशिश करेंगे आपका। और फैज जी लिखते हैं कि ये भी जबरदस्त हिट गाना है, दिल से धन्यवाद देते हैं राधा कृष्ण गोप जी को। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की फरमाइश जबरदस्त। राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश चल रही है राधा कृष्ण गोप जी आपकी। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, ये गाना मैंने भी पहली बार सुना है। जी मैंने भी पहली बार सुना है। नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। ओके, और इसी बात पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुभाष तिवारी जी का ये धरती चांद सितारे सुनवा दिया।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ गए हैं और हमारी नंदनी माँ लिखती है कि सभी गाने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और नंदनी और यहाँ पे नाहिद जी लिखती है कि वाह क्या पसंद है, सुपर हिट अमेजिंग पसंद। एंड हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फरमाइश है। और ज्योति खटवाड़े जी लिखते हैं भाई साहब की पसंद लाजवाब लाजवाब लाजवाब। एंड फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है, जबरदस्त पसंद चल रही है। एंड राजेश गौतम जी लिखते हैं कि जबरदस्त सॉन्ग सुनवाने के लिए सर जी मजा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और बीके पंच जी लिखते हैं कि वाह तू जब जब मुझको पुकारे, लाजवाब गाना मजा आ गया सुन के। राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर हिट गाने के लिए की फरमाइश। और एम डी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉक पर हिट हिट गाना है। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि वाह सुपर हिट सॉन्ग है, मजा आ गया सुन के।

0: ओके अगला गाना सुनवाते हैं अरुण मंडल जी का।
1: आरजे अमन सर नमस्कार, हम अरुण मंडल राजकोट से।
0: वेलकम जी।
1: आज मुझे एक गाना सुनना है, दिल है बेताब, फिल्म का नाम और गाने का बोल है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बस कहानी है। और ये गाना डेडिकेट है अमन सर आपको, आरजे वंशिका मैडम को, आरजे परमार सर को और सुनील कुमार को।
0: Okay.
1: और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों
0: इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया आपकी पसंद का ये गाना।

और अब यहाँ से मैं थोड़ा सा गाने को यानी कि कम प्ले करूँगा और फीडबैक भी कम शामिल करूँगा, और चूंकि बहुत से दोस्तों की फरमाइशें छूटने वाली हैं, और चूंकि मुझे 10 बजे ही शो एंड करना है, क्योंकि अब आजकल हो गया है बारिश का मौसम, और अगर मैं ज़्यादा देर तक शो करूँगा तो समझ लीजिए मुझे जाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं डेली मतलब शाम को स्टार्ट करूँगा 6:30 बजे और रात के 10 बजे तक मैं प्रोग्राम ख़त्म कर दूँगा। धन्यवाद।

वेलकम बैक और मेरे पास मैं बता दूं कि अगला मैं फरमाइश प्ले कर रहा हूं और वो है यानी कि शिवम जी का। भाई शिवम जी प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

और आज के यानी के टॉप लीडर में जो यानी के बनती है विनर वो है मीना इब्राहिम जी। तो मीना इब्राहिम जी अगर कोई गाना सुना है तो जल्द से जल्द मुझे भेज सकती हैं।

0: अच्छे, बाकी सब कुछ हम खा, इश्क बड़े है काम का। मैं क्या हूँ मैं, तू क्या है तू,
1: वाह वाह। ओके, अगली पसंद मैं सुना रहा हूँ जो राधा कृष्ण जी आज इन विनर बने हैं, उनके पसंद का गाना है।

0: वेलकम बैक। और फीडबैक भी बहुत सारे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा शामिल कर लेता हूँ फीडबैक। जाकिर खान लिखते हैं कि हर पल मेरे होटो पे गाना मुझे बहुत ही पसंद है, धन्यवाद देते हैं। बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी आज की सभी फरमाइश बहुत ही लाजवाब लगी है। और हुकुम तंजी लिखते हैं मंजी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। एम डी फैज जी लिखते हैं कि दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान मेरा गाना प्ले करने के लिए। और दत्तक कदम जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुपरहिट हुआ है, धन्यवाद सभी दोस्तों का। ज्योति जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पसंद सभी दोस्तों की। अरुण मंडल जी लिखते हैं कि अर्जमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन जी आजकल आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं।
0: अच्छा जी, कैसे उठा ले हूं? मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना बाबू। और राधाकृष्ण गोप जी लिखते हैं कि हमारे गाने को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और मीना जी लिखते हैं कि मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वेरी लाजवाब पसंद है। और आखिरी गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।
2: हेलो बहुत दोस्तों का अमन सर, आज के इस प्रोग्राम में मुझे गाना सुनना है। फिल्म का नाम है इम्तिहान और गाने का शब्द है इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। ये गाना सुनना है, डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर को, आरजे वंशिका को, आरजे परमार सर को, ऑनलाइन सुनने वाले सभी लिसनर्स को, साथ साथ हमारे ग्रुप में सभी दोस्तों को भी डेडिकेट रहेगा। और आदरणीय सर्विस भगत को भी डेडिकेट रहेगा सर, गजानन सालकर को भी डेडिकेट रहेगा, और मेरे सभी दोस्तों को। ओके थैंक यू।
0: ओके जी, गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ अनिल मेहता जी, और इसी गाने के साथ मैं आप सबसे लूंगा इजाजत, लेकिन थोड़ा सा गाना गुनगुना कर। ओके

और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट सब। और हाँ, 6:30 मैं आ जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे 10 बजे तक ही प्रोग्राम करना है। धन्यवाद, बाय बाय।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
1: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
1: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
1: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन तुम,
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: नजर न लगा दीजिए।
1: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
0: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।